जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन अस्थान दियां हाजरियां भरते हुए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजों बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी सतगुर जी आप नाम जानी जान हो सतगुर जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे यरुकता दे नाम दे दात आसा मनसा पूर्ण करनिया हर मैदान फतेह करनी काल राज करनी यात्रा सफल।

0: आज करेगा काल सा की रहे ना कोई
1: ग्वार जम लेंगे बजे जन जोर उठी स्वाम ले की कर गुड़ावा सा गंगा बजे देगा नया तरंग अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुमंत्र दास हम दुखते दुकालन

के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र भावने के सर्वत्र जैसे के सर्वत्र वैसे के सर्वत्र।

आज्ञा लिखारी के दास का तो प्रसाद चौपाई प्रणवो आदि कंकारा जल थल मयल कियो प्रसारा आद प्रग अवनाशी लोग चतर ज्योत प्रकाशे हस्त कीट के भी समाना राव रंग जय सरजाना अदब अलख पुरख अवगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अच्छे अनभेखा राग रंग जह रूप न रेखा वरन चहन सब होते न्यारा आद पुरख अवगत अदब अविकारा वरन चहन जय जात न पाता सतरो मित्र जय तात न माता सबते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद पानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा विषण अंत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो कोट इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए लोग चतर दत खेल रचायो बाहर आप ही बीच मिलायो दानव देव फनिंद अपारा गंधर्व जच रच सुबचारा भूत भवेक भवान कहानी घट घट के पट पट की जानी तात्मा जह जात न पाता एक रंग का हूँ नहीं राता सर्व ज्योत के बीच समाना सब हूँ सर्व ठौर पहचाना काल रहतन काल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता जात पात जह चहन न बरना अवगत देव अच्छय अनभरमा सबको काल समन को करता रोग सोग दोकन को हरता एक चेत जह

कात हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कात हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कात हूँ भिखारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ, दान हो के मांगो धन देत हो, कहूँ माँ राजन को दीजत अनंत दान, कहूँ माँ राजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ जज गंधर्व बुरक कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपयो, कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोप काब होय के पुराण को पढ़त मत, कात हूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद बीसी, कहूँ इंद्र पद भी छिपाए छीन लेत हो, कात हूँ विचार अविचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी कहूँ सरब ठार गामी, कहूँ जति कहूँ कामू कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कोई डंडी होय पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कात हूँ सिपाही होके सादत सिलाहन का, कहूँ क्षत्रिय होके अरे मारत मरत हो, कहूँ भू भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कात हूँ पई होय के पीवत पीवावत हो, कात हूँ मई कहूँ मद पान हो, कहूँ माँ सुर होय के मारत मवासन को, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में

कहुआ कलंक कहु मारत मयंक कहु पूरन प्रजंक कहु शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पौन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला दर छैल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेदवाणी कहूँ कोकी कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शुद्धता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोषी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के शुद्धता की सूरत हो की शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ इकाति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग से टिकत हो कहूँ बर देत कहूँ छल सिंह छिनाले सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिर घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राणपति के श्री भगवान की

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप बलि वेदनावत शीस न जात बिचारे। हेते भय तो कहाँ भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड़ ग

श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखा सुध सुपाह दुरंत दुपास साध सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरिन मरोर मवासन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आरम चार सार की धार बछैया।

जाचका अनेक सो एक जवैया दानव दे फने निसाचर भूत भवे के भवाने जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुण्य प्रतापन बार जा धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फेरे जागे शत्रु सब अवलोक छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधे भुजंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान एक स्वयंवर साज परेंगे ब्रह्म सर्वशंत अच्छी पदार्थ फसे जम फांस परेंगे जे नर सी पद के प्रासे है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो भग ध्यान लगायो नाथ फिर लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोक गवायो बास कियो बेखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैसे बितायो साजे कहो सुन

काहू लखेओ रवाची दिशा में है काहू पछा हो गोसी से निभायो को भूतान को पूजत है पस को उम्रतान को पूजन धायो पूरे क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो

अन भेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक पितार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार बकत बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फणिंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण बिछन अवतार कई इंद्र बार मुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोम का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमरित बखान कऊ कतत हिसो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव सन्यास कहूँ योग भेष उदास कहूँ निवली करम करंत कहूँ पौन हार दुरंत कहूँ तीर दान अपार कहूँ जाग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमरित रीत कहूँ भेद शिव विपरीत कई देत देत फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ करत जल में जाप कहूँ सत तन प्रताप कहूँ बाद बनह करंत कहूँ ताप तनह सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राज रीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ सेग ब्रह्म रट स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेग नाम चरंत बैरा कहूँ सन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तब साल लगुन राज छंद जले हरी थले हरी उरे हरी बने हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नबे हरी इहा हरी उहारी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेघ हरी अदोख हरी अद्वैक हरी अकाल हरी अपाल हरी अछेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सो तेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अभर्म हरी अकर्म हरी अजय हरी अभय हरी अभेद हरी अछेद हरी अखंड हरी अभंड हरी अडंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरी अभेव हरी अजेव हरी अछेव हरी भजो हरी थपो हरी तपो हरी जपो हरी जल सुई थल सुई नदी सुई नद सुई वृक्ष सुई पत सुई छित सुई ऊर्ध सुई भजस्तुअंग रटस्तुअंग ठटस्तुअंग जिमी तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुही अभय तुई अछू तुई अछय तुही जतस्तुई व्रतस्तुही गतस्तुही मतस्तुही तुही तुही तुही तुही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तो प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हिभूतारी के दुआ मसान वास करोई करत है घुकुमड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन साधे ही मरत है बिंद के सदैया दाए हीर की बटैया देद बंदरा सदी पाए न गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है भूत बने चारी छेद छौना सब दुदादारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के भचैया दान लोभ के तजैया दे तो कवन के जैया मृग भैया मानियत है नब के उड़ैया दाए पंछी की बटैया दे बगला बिडाल मृग ध्यानी ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है
भूम के बसैयाता है भूजरी के जैया के नब के उड़ैया सोच रैया के बखानिया फल के पछैयाता है बांदरी के जैया कहे आदेश फिरैया दे दो भूत के पछानिया जल के तरैया को गंगे ऋषि का हत जग आखे भचैया सो चकोर सम्मानिया सूरज सिवैयाता है काल की बटाई दे तो चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिया नारायण कच्छ मच्छ ते दुआ कहत सब काल नाव काल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन चारी लिखी के नाम के महत लहियत है माधव भवर और कन्हैया नाम कंस को बतैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत ना गुणता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है बेसपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भूख प्या देह पैसहत है निवरी गरम जल होम पावक पावन होम अधोक मोएक पाए ठंडे न बहत है मानो फनी देव दानो न पावे भेद भेद अकतेव नेत नेत कह कहत है नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओई करत है चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोनारा जब भाव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा जे न वेद चारी सनत कुमार सी तम से तपस्या नानत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जोगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है ब्रह्मार बशन के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समून के होए होए बिताए है बोंदी मदार के ते अंसनी कुमार के ते अंसावतार के ते कालबद भय है पीर और पिकाम्बर के ते गने न पर देते भूमि ते हो गए फिर भूमि ही मिलाए है जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरा दे बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है मान से मही पौ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है दारा से दिली सर दुर्योधन से मान सारी भोग भोग भू अंत भूम में मिलत है सिद्ध दे करे अनेक तोपची कपट भेद पोस्ती अनेक दानी बाबत है शीश को कहा भयो मल जो के पा जो कहा भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सोतन डंडा अष्टांग तीस को कहा भयो रोगी जपे डारे रहे उर्दभो को मानते ना मुड़ना रायो आदिश को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जाके दीस को शीश पट कत जाके कान में खजूरा दसे मूड छंड कत मित्र पुत्रों के शोक सा आँख को चरैया फल फूल को बछैया सदा मन को भ्रमया और दूसरों ना भोग सा कहा भयो भेड़ जो घसत से वृक्षण सो माटी को पछैया बोल पूछ लीजे जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भिड़े पर लोग सा नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाए ठाटे सदा बन में रहत ब्रेछ फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जु एक ठोर बास करे कागल चीर देश वेद विचरत है ज्ञान के भीन मादान में न हुजलीन भावना यकीन देन कैसे कतरत है जैसे एक स्वांगी गाँव जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बन कर दिखा भई कहूँ पवन हरी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गा भई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे वारी कहूँ दंडधारी होके लोगन भ्रमा भई कामना अधीन पर यो नाचते नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंचरा गदहा अनेकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी भी ची ची चोर ठाकुर ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फाटक मार मार डार ही डूबे नरक धार मुड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भी कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाइये ताप ना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पे पाइये अजा दे पूजना सदीव तू ही उचरत है नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाइये तन लकांच वंजी डोल वो करत है आग में जरते गदरांड की परत कर पताल के बासी की भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो
हिंदू तुरा को राव जी वाम सभी मानस की जात सब के पहचान वो करता करीम सोई राजक रही मोई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब के जो जान वो देहु राम सी सोई पूजा अनिवार्य ही मानस सब एक पैन एक को प्रभाव है देवता देव जान गंधर्व तुरा के हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नारे के कान एक दे के बान खाक बाद आता सो आप को रलाव है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरे ते धूर के कने का पूरे धूर ही समाएंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सबे ताही में समाएंगे केते काछ माज के दे उनको करत भच्छ केते आछ वाच हुए सब पाछ ओट जाएंगे केते नब बीज अच पाज को करेंगे भच्छ केतक प्रतज होए बचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज हुआ तेज में अतेज जैसे तेज लीता ही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासे के भ्रमाई फिरत है करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखो भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे चौचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंदरा बजाए हरे किन्नर सा पज हरे पंडित तपत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पुत्रंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सत्यता बद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगादे अभय आदे अद्वै अविनाशी परे अंग पराप्रम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगादंग स्वरूप अखंड प्रतावाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंस नेहंस नाते उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे नारायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना क्षोभंग अभूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदत वै अजोहंग।

ना गेह ना भर्मंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभादंतंग प्रतापे अयुक्तंग अक्षय आदित्य अथापे विमुक्तंग अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परेवंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भर्मंग ना सर्वंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग दे के कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं देह दोखं कहूं खदी रोग के सोग शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साध गीताम सी हो कहूं योग विद्या धरे ताप सी हो कहूं रोग हराता कहूं योग युक्तं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट कन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेवानी कहूं कोप की कार कथा कहानी कहूं उद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं वेद पुराण के गीत गावे कहूं शोध से कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रह देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजं कहूं राजीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारण कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेल भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुण कथे कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं पीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षय आदत वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते तो प्रसाद पादली छंद अभ्यक्त जन भव प्रकाश अक्षय स्वरूप अनाथ अन तोट तेजन खोट भंडार दाता दुरंग सर्वन प्रकार अनभूत जन शिजगार करता सदी हरता सनद आसन डोलन भूत कर्म दाता दयालन भूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योधमान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गे नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेक जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सार जय त्रास आवास नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कटे हो ना अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत पे जय अलख रूप कथत कते जय अलख रूप आसन अडोल जय मितेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलव योग साधन दुरंत तन तीन तन शीत घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन योग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्द बा देशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उतरंत वेद कई कोप काव कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव होत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग आद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीरथ धर्म कई देश देश भागा रटन कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक ताल पायत न पार
कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता पायत न पार कहू राज रीत कहू जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उतरा सो करम निवली आद करम कहू हस्तदान कहू असुमेध मखो बखान कहू करत ब्रह्म विद्या विचार कहू जोग रीत कहू वृत चार कहू करत जज गंधर्व गान कहू धूप देव कहू अर्घदान कहू पितृ करम कहू वेद रीत कहू नृत्य नाच कहू गान गीत कहू करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गेहवाद कई भ्रम दे देसन उदार कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजन नहीं तदर तास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव देष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम

जय जम्पो हो जुगण जू भंग जय भय कंपो मेर पयाल भुवंग तप तप तापस धर्म जलेर थलंग धन उतरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद स्वरूप भेद अभियंग अन खंड अतुल छेद अछियंग अन काल अपाल दयाल अस्वंग जय ठटिया मेर अकाल भुवंग अन खंड मंड प्रचंग नरंग जय रचंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम बकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना शोक सुखंग जय रोगना शोकना भोग भोंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रंगना रेख रुकंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नौ खंड सचियो रस तामस तेज तेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नर पाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किय देव देव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना शोकना भोग भोंग जय जम्प किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाय किय गण किन्नर जय भुजंग दिए गज पाज रथाधिक पांत गणंग भव भूत भविक भवान तुअंग जय अंडज सेत जय रजंग रज भूम काल पताल चलंग रज पावन पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास सितंग रज रोज काद चंद्र वृतंग दुध चंद निशा दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक छत्र चार रचे नर गंधर्व देव देव सचे अन धूत भूत छूत मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद भेद छेद नरंग जय चार छत्र चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आशिरंग जय बंदन देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पारना पावत पूर्मतंग अन खंड स्वरूपा गट अन्न प्रभा जय जम्पद बेपुरान सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुध सिंध अधो मुख ताप जपै कई कल्पन लो तब ताप करे नय नय कृपा निज पान पर जय भूकर धर्म सब तज है क्षेत्र कृपा निज को जप है तेव या भव सागर को तर भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोड़ वृति वेद उच्चारण सा सुति जो वारस के चथ के रस है ते भूल न काल फदा फस है तो प्रसाद नाराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सजा गंज गंज मानिया देव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त स्मृत दा सदयु सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदयु सिद्ध वृत दा अनूप रूप स्वरूप अछेद तेज मानिए सदयु सिद्ध सतता प्रताप पत्र जानिए ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेक है अधोग दाग दग है भूत भ्रम भेक है ना तात मात जात है ना पात चैन भरण है अदेग असेग भेग सदयु विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ अभिषेक विश्व भरण है जमी जमान के विख सदयु करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेगना ज्ञानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है अगंजा देव हो कह सो कह सपाई है जिमी जमान के बिखा समस्त एक जोत है न घाट है न भाड़ है न घाट बाड होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन मकान प्रमाण तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संक है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है न नेह है न गे है न दे को बनाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है
ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छाया को मिलाओ है ना राग है ना रंग है ना रूप है ना रेक है ना कर्म है ना धर्म है अजन्म है अभेक है ना तात है ना मात है अखाल खंड रूप है छेद है अभेद है ना रंग है ना भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है पाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना शोक है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है ना सीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैक है ना भय है ना द्वी है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत अभेक है मलिया रूप राग रंग है ना द्वैक है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना चित्र चयन वरण है बेअंत है अनंत है अनंतेज जानिए अभूम अविज है सदा छेज तेज मानिए ना आद है ना व्याद है अगाध रूप लेखिए अधोक अदाग अदग है अक्षय प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है नंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेग रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितास्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस आजे बड़े तपस्पति विशेखिया बेंद बेंद बेंद को करंत पाठ पेखिया अगाध आदेव किया नाद मादम जा मानी है ना जात पात्र मंत्र सत्र सत्र सने जानी है सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रो देह के अनंत भांत सोद है तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आद नाद अगाध वृक्ष धर्म करण प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आत्मृग अपार हस कीट बिख बस सब ठौर में निर्धार जात पात न ता जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखर मोज चक्र चैन न चित्र आ देव दार मुरत अगार नाद अनंत आद अंत न जानिया बिखा देव दुरंत देव भेव न जाने जे मरम वेद कतेव सनत औ संकेश नंदन पावई न हसेब जज किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार ही सी सकरो मुगचार सर्व सपत पतार के तर जापी ही जय जाप आ देव गा तेज नाद मुरद ताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर यो विराज राज राज प्रवीण जज गंध देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैश्रंग के बिख विराजे सूत्र भी व नाहे गुड़ गौण न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम काश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपद बतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहस फन नेत पूरन होत सो सोध हटे सब सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहो सबो मेल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव दानो मूड मानो जच न जान जेब भूत भव भवान भूपत आद नाद नाथ अगन बाय जले थले मैं सर्व ठौर निवास दे गे ना ने सन्या बे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अभेक चक्र चयन न वरण जागो जात पात न भेक रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सबको व्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदेव पाल दीन बंद प्रवीण शिव सर्व को करतार बरन चेना चक्र जाको चक्र चेना कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भोगो भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरख प्रमाथ
दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत में जयगाथ भूत भवेक भगवान प्रमाण देव अगंज आदना श्री परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जे तकीन तौर पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघाट दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनक पुष्ट करनक सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व हरता आदि व्यापार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अखंड श्रेष्ठ चार विचार जते जानिए सब विचार आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान

बेर भेव न पावे शिवरुद्रा उद्भुक्षार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सबै गुण चक्रत भे भुक्षार आद अंत न मद जाको भूत भगवान सत द्वापर त्रिया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार सके सब नहीं पाई है ते पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्छर पार सो सो थके महासुर पाए उन्हें पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरे मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बेतैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन स्वर का नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म कवन जो को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सो सब का सो कह दम को कहा कर हंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंद दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन कहो रागी को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कौन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को क्रम है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चिंतन की चेष्टा कहाँ क्षेत्र प्रकाश दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहाँ धर्म की हाँ दोहरा को सूरा सुंदर कवन

दुर्जन दल लंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रत्ये चचरासुर मारण पदे दुधारण नरक निवारण गुण गते अक्षय खंडे देर प्रचंडे खंड डंडे अलख मते जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट डंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुंसन महक मते दानव प्रहार नरक निवारण अधम उदाहरण उर्दह दे जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन आदृते डावरू डवन बवर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुनिया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके आसी झमके फुंग फनंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मंड विमंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण जो जिते सरदार बिबरखन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम का तल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुर आचन ज्योति प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म वृते सुरणता चिंती अनल बेंती जो जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैती स्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम कास पताल जलंग चाचर चमकारन छिछुर हारन धूम दुकारन द्रपथे दाड़वी प्रदंते जोगम जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेज अष्ट भुजे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशम धर्म धुजे घुंगरू घमंकण शत्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाज प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध स्नाहे अगमताय एक वृते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मते कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाय पताल कासन ले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तुंद तपे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक बितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी छात्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद रंगण तिरछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे चूर भुजे दामनी दमन के हर लंके आद अदंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम शकर निसोम मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोज विशोचन कौज कसे दामनी प्रका प्रहासे सुसर नासे सुभ्रे सुभासे दुष्ट कसे चंचला प्रंगी बेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धन घंटका विराजय रुणजन बाजय भ्रम भय बाजय सुन सुरंग गोकल सुम लाजय कल्पिक भाजय सुख बराजय मधो रंग दुर्जन दल दजय मंतन जय सब न भजय रो रण जय जय हुसी मै कासुर मर्दन चंड चकरतन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन क्रोध क्रोधन क्रूर वित्ते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मै कासुर वर्धन आज गाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद नंगी अगाद गते ब्रजराज विहंडन चक्षर दंडन तेज दंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पदे उदाहरण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन वैश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वरवर खण दोष प्रधर खण बितल तले अष्टाय बाहन बोली बाहन संत बनाहन गुण गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते दुग दो प्रवक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दुग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय होसी मै कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुगी दमन के बाग बबंगे भुजा फरंगे सुध गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आज गाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पदे धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे
चंद्रानन चारे नरक निवारे पते धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन धूम्र विध्वंस आद कथे रक्का सुन मर्दन चंड चकरदन दानो अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म धुजे धुमराज विधुंसन सुन चुनसन सोम नेपाल निसोम मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जद्दब भूतन भय अनंत कहो जथा मत रैण तंत करता करीम कादर कृपाल भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंजय दाता दुरंज दुख दोख रहत जय नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों से क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलड़ सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूद वह कह लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंग अद्वय अना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार जय जात पर नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अभिचल पार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेद कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल जब जी जिंदगी करत पाल उर्दंग विराज सिद्धंग सरोप बुद्धंग पाल युद्धंग अनु जय रूप रेक नहीं रंग राग अनशिज तेज अनभिजता जल थल मही बंतन दुरजय नेत नेत निर्दिन उछरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट अंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुग्या दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निर्दिन उछरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पच बसो नग नग नराधिप सर्व समय समको व्रत पार भोगत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया नि दोखन देखत है पर देत न हरे दात है दुख दोखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारन पूरम प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद गते भेद विचार है रोजी ही राज लोक राज रोग रोहान की रोजी ना टारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भवे के भगवान बनाए देव देव खपे अहम एव ना भेव लखे भ्रम सिंह भरमाए भेद पुराण कतेब कुरान असेव थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह केन श्री पद मापद पाए आद अनंत अगाद अद्वेग सो भूत भवेग भवान अब है अंत विहीन अनातम अदाग अदोग अछिद्र अच है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मापद ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है देह विहीन सनेह सबोतन नेह विरक्त गह छह है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पद्मा पतल है रोगंते अर्सोगंते जल रोगंते भव भांत बचावे सत्र अनेक चलात तो निक न लागन पावे राखते अपनो कर दे कर पाप समू न भेटन पावे और की बात कहाँ का तो सो सो पेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसातल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सकी नहीं पार प्रवाह को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हरात नावे नारद से चतरानंद से रघु नारी से सब हो मिल गायो भेद कदेव ना भेद रखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार माप सिद्ध सनातन तन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अभितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान भेद निरपान सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेद अन छेद पुकारे
रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे आद अनाद अगाद अभेग अभेग जपियो तिनि कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाब्रधारे देश फिर कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्याद करे मुकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया मां सतरन के साल हैं दान के दिवैया महामान के बढ़ैया औसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महाकामान हुके मान हैं ज्ञान हुके ज्ञाता महाबोधता के दाता देव काल हुके काल महाकाल हुके काल है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना किते बादे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है फरागे फरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने नेज काम है मर हटा मंगेले तेरी मन सोत पैसा करे दृढ़ लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते है रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पापों को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस नियावे तिब्बती ध्याय दो देह को दलत है जिन्हें तो है ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान वान को महेश गंग दान को अभेद कही अत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे ना दीन साध अधीन कही अत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सरब विद्या के उदार है अपार कही अत है हाथी की पुकार पहले पाछे पहुंचाता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनी अत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुकुचार किते कृष्णा अवतार किते राम कही अत है किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडे उदासी जो द्वार तही अत है किते महादीन किते व्यासे प्रवीण किते कुबेर कुलीन किते जज कही अत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार प्राही ते अपार निराधार लही अत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानिया अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हुके राशि अनासी कह के मानिया जंत्र हुना जहाँ जागी बाप हुना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा ज्ञान मानिया तेज हु को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिया तेज हु को तर है के राशि को सार है के शुद्धता को कर है के शुद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है के वृक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को रूप है कुमद को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विबुद के क्रोध को अभूत के अच्छा विनाशी है काम को किनिंदा खैर खूबी को दिहिंदा गनी काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहिंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोगत है के व्रतता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचे ईमान को दिवैया जम जाल को कटैया का कामना को कर है तेज को प्रचंड है खंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के अवधा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पारा बारू को पार जागो की जल विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे अब सी हला विधावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनाश है देवन को देव माँ देव हु देव है निरंजन अभेव नाद अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के
देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूमि के भुजैया महा भुजैया महा बाल के राजन के राजा महासाजू के साजा महा जोग को जोग धरैया द्रुम छाल के कामना के गारे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा व छात कैसी छतरा नेर छपा कैसी छप काली जी के कुल के हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सातों सिंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रतिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कलाउ

गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीओ आप जी दे पावन पवित्र सतयुगी तप स्थान श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे संध्या दे दीवान सज्जे सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जीओ संध्या दे दीवाना अंदर लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार हुई पावन पवित्र कथा विचारा करदिया एक नहीं अनेक प्रकार दी हुई गलतियां भुलां दी मुआफी बख्शनी गां वास्ते समत बख्शनी पढ़िया सुनिया विचार संगतां दे हिरदियां तक पहुंचाउणियां सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी कथा दे माणे अंदर संगतां ने बेअंत माया भेटावां कीतियां संगतां दीआं तिल फुल सेवावां भेटावां चलिया चलिया कदम लेखे विच लाउणा महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे

संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संग

परंत भिन्न भिन्न तोहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेर जस तज कीनी उतभुज खान बौर रच देनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तपाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक महर।

मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्न स प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नह ध्याऊं कान सुन पहचान नतिन सो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोभ मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय छुन छुन सत्र।

कह हों जग माहे, जो तह प्रभ को ध्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है, विचार कृष्णा है, जलते उपजत

साहिब एक दूजी सचो सच वरताया जिस तू दे तिसमें सस्ता तिनी सच कमाया सतगुर मिलिए सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूरख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर्य शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक